0: और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बँड 102.7 मेगाहर्ट्स आणि न्यूज ऑन AIR ॲपवर हे आहे आकाशवाणीचं कोल्हापूर केंद्र। श्रोते हो, सकाळचे 6:05 झाली आहेत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया

0: पर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की

0: आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवली। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने

0: लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बँड 102.7 MHz आणि न्यूज ऑन AIR ॲपवर आपण ट्यून केलंय आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्राचं वैविध्यपूर्ण प्रसारण। श्रोतेहो, सकाळचे 8:15 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत
3: ऐकूया खवय्यांसाठीचा चटकदार कार्यक्रम रुचिरा मसाले खवय्येगिरी। रुचिरा मसाले खवय्येगिरी या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत रुचिरा मसाले बाजारगेट कोल्हापूर।
4: ही यादी ब्याडगी संकेश्वरी मिरची 26 प्रकारचे स्वच्छ निवडक मसाले आजच्याच घेऊन या।
5: आणि उद्या ते घेऊन डंगात जावा म्हणशील काही आणणार नाही।
4: काय
5: अग, रुचिराची एवन चटणी घेऊन येतो, तुझा त्रास कमी, चवीची हमी।
6: रुचिराची एवन चटणी,
7: खास घरगुती पद्धतीने तयार केलेली रुचिराची एवन चटणी।
1: रुचिरा मसाले खवय्येगिरी या श्रोत्यांच्या आवडत्या कार्यक्रमात मी निर्मला भांदिग्रे सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। मंडळी, आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया पालक बनाना कबाब पासून। पालक बनाना कबाब हे बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य लिहून घ्या। 5 अर्धवट पिकलेली केळी, 1 वाटी बारीक चिरलेला पालक, 2 बटाटे उकडलेले आणि कुस्करलेले, 1/2 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 1 चमचा मिरचीची पेस्ट, मीठ साखर चवीप्रमाणे, 1/2 वाटी नारळाचा चव, 1 चमचा लिंबूचा रस, 1/4 चमचा जिरे पावडर आणि 1/4 चमचा बटर, तळायला तेल आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर। तर कृतीकडे वळूया। पालक बनाना कबाब बनवत असताना पालक मिक्सरमधून वाटून घ्यायचा, त्यातच कुस्करलेला बटाटा घालायचा आणि मीठ साखर आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट घालून मिश्रण कालवून घ्यायचं। नंतर केळी ॲल्युमिनियम फॉईलमध्ये गुंडाळून गॅसवर भाजून घ्यायची, मग उघडून साल काढून त्याचे 2 तुकडे करून घ्यायचे। त्या तुकड्यांना मध्ये भरल्या वांग्याप्रमाणे किंवा भेंडीप्रमाणे चिरा द्यायच्या। या चिरेमध्ये जिरेपूड, खोबरं, बटर, लिंबू, थोडं मीठ आणि साखर एकत्र कालवून घ्यायचं आणि ते केळ्याच्या तुकड्यामध्ये भरायचं। यानंतर

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: चैनल के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
0: चले
2: ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री

0: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
5: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
6: नमस्कार सर। नमस्कार।
7: नमस्कार सर।
5: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
6: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटरनेशनली।
5: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
8: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया

0: ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था, अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, कहीं अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है।

0: बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरनरवीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान

चंद में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के

मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि मल्हारजुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया।

और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365

0: रुपए जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी मुंबई केंद्र। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांशी साधलेल्या मन की बात या संवादाचा मराठी अनुवाद आता प्रसारित करत आहोत। ऐकूया तर मन की बात।
3: माझ्या प्रिय देशवासियांनो नमस्कार। मन की बात मध्ये पुन्हा एकदा तुमच्याशी संवाद साधताना मला अतिशय आनंद होत आहे। देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आपल्या देशातले लोक देशहितासाठी, समाजहितासाठी अशा काही अद्भुत गोष्टी करत आहेत की जेव्हा त्यांच्याबद्दल आपण ऐकतो तेव्हा आपल्याला एक नवीन प्रेरणा मिळते। आज कार्यक्रमाची सुरुवात मी ॲथलेटिक्स मधील देशाच्या अशाच एका कामगिरीने करणार आहे। काही दिवसांपूर्वीच झारखंडच्या रांची इथे नॅशनल सिनियर ॲथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा झाली। यामध्ये देशभरातून आलेल्या जवळजवळ 800 खेळाडूंनी भाग घेतला होता। या दरम्यान 4 वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांमध्ये 4 राष्ट्रीय विक्रम मोडीत निघाले। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टिके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा आणि कुलदीप कुमार या खेळाडूंनी वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये नवीन विक्रम प्रस्थापित केले। मी सर्वात आधी या सर्वांचं अभिनंदन करतो। मित्रांनो, देशभरात ज्या एका स्पर्धेची खूपच चर्चा होत आहे ती म्हणजे 100 मीटर रेस, 100 मीटर धावण्याची शर्यत। अवघ्या 2 दिवसात पुरुषांच्या 100 मीटर धावण्याच्या शर्यतीचा राष्ट्रीय विक्रम 3 वेळा मोडीत निघाला। ज्या 2 खेळाडूंनी ही किमया करून दाखवली आहे ते आहेत गुरिंदर वीर सिंह आणि अनिमेश कुजूर। मी असा विचार केला की यावेळी मन की बात मध्ये या दोन्ही खेळाडूंशी संवाद साधावा। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर तुम्हालाही नमस्कार, सत श्री अकाल।
4: नमस्कार सर।
5: नमस्कार सर।
3: वा भाऊ, तुम्ही तर खूप मोठं यश संपादन केलं आहे। तुमच्या जोडीनेही मोठी कमाल केली आहे। आपण संगीतात तर जुगलबंदी पाहिली होती, पण आव्हानांमध्ये अशी जुगलबंदी आता पाहायला मिळत आहे की एकानं आव्हान द्यावं आणि दुसऱ्यानं ते आव्हान स्वीकारावं.

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहां चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का यह है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है, और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछुओं में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछुओं प्रेमी युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं, और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने, लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई।

या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े से भी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है। हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोचकर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए हैं। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसक, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

0: जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं।
1: उष्णतेच्या लाटेत नागरिकांनी स्वतःची काळजी घ्यावी असं प्रधानमंत्र्यांचं मन की बात मधून आवाहन।

ग्यावासी लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, यह अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को यह दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठकर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे

बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, क्या कहूं मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की। फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपटकर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा। और

सरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से खतरे में मत डालिए। आज ही और अभी दृढ़ संकल्प लीजिए, नो टोबैको, अब और तंबाकू नहीं।

तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये कार्यक्रम विविध भारती के लिए आकाशवाणी कोटा की प्रस्तुति।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार

0: कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने

0: रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि

0: ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गिलो की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: पवन दो चंचल धारा मन की मुनिया दो नजाए मस्त पवन हो चंचल धारा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: धन्य जवान अपने थी, धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये कर

अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना,

0: हाँ, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओह ठेसी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ दो हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
1: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
0: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह के दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
1: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए?
0: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हाँ,
1: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना
2: मुन्ना। देसी।
3: छोड़ दीजिए ना।
2: अरे अरे सुनो तो।
3: नहीं सुनती।
2: ओफो, अरे बात तो सुनो
3: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
2: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
1: ईश्वर की कृपा हुई तो।
2: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
1: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
2: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस? क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की।
0: ओह डेजी, माय गॉड।

0: सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: नहीं।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में

0: कानून के अनुसार भी है लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
1: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
0: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
1: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
0: अच्छा छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
0: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
1: जी
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
1: चलिए कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
0: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
1: एक साथ घूमने लगेंगे?
2: हाँ?
1: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
1: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
0: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
0: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा मैं चलता हूँ, भाई कुछ जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय बाय।
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
3: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
3: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
3: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
0: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
0: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
3: जैसी तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
3: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
3: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
1: बेनी को यहां क्यों घसीट लाया?
0: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
0: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
0: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
0: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब याद नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष। बेनी मुझे क्षमा करना, बेनी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी।

0: लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
0: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
0: ओह डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
0: नहीं।
1: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
0: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
0: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
0: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
1: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे हैं।
0: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
0: क्या?
1: लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
0: बोलो।
1: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
0: मैं?
1: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
0: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
1: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
0: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
1: प्लीज डॉक्टर।
0: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
1: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
0: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ डॉक्टर रामदास,
0: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
0: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
0: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
0: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है।

0: अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
1: समझा नहीं?
0: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिलकजी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
1: व्हाट यू मीन डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
0: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
1: डॉक्टर।
0: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
1: नहीं नहीं पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
0: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़ा कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
1: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
1: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो, क्यों डॉक्टर,
0: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी। हाँ, हमेशा के लिए भुला दूंगी। हाँ।

0: डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी,
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: नहीं, डेजी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने परम की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं। डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रहे।
0: नहीं नहीं, डेजी, ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूं।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ है।
0: डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूं। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
0: अरे
1: अरे, अरे ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी, ये मेरी नजर टूट रही है। डेजी, डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
1: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कब कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसी हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है

0: मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लगा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: सभी छाँव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा सबको

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
0: जी,
1: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
0: जी,
1: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
0: जी।
1: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
0: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
1: जी।
0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
1: मैं तो अच्छी हूँ
0: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
0: जी,
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी।
1: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
0: ही हैं।
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
0: जी, बिल्कुल।
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
0: जी,
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी।
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
0: जी,
1: रावल जी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
0: जी।
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते

0: मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थी। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूं मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए, उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी
0: एक्टर।
1: एक्टर
0: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा, तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।

0: बताता हूँ पहले।
1: अच्छा,
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है,
1: हाँ।
0: तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं
1: अच्छा
0: कुछ लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू,
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूं, हम लोग को कोई यहां पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन था
1: हाँ वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ।
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही उस
0: पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह, उनकी
0: मतलब
1: शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रहीं, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की तरह,
1: आम पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति,
0: बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई, मतलब मेरे ताऊजी, वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था। क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे, वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको

0: में इन्वॉल्व होने का समय मिला कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
1: मतलब
0: जानबूझ के नहीं
1: स्वप्रेरित
0: हुआ।
1: हुए क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
0: हाँ
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी।
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
1: अच्छा।
0: हाँ तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: हाँ,
0: और
1: तब
0: फिर
1: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
0: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई,
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई। और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त,
1: हाँ जी।
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: यही कविता है जो उन्होंने
1: लिखी,
0: उसी वक्त
1: उसी
0: लिखी,
1: दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां से
0: हुआ।
1: वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी, तो मित्तल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज
1: जी
0: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहां से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदू

0: इंसान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
0: सही बात
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा। गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए कि बच्चों के भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो
1: कोई
0: पूरी
1: गाना
0: नहीं होती।
1: जी बचता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही
1: साबरमती
0: के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू, बड़नगर में उनकी पैदाइश, बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो

0: क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
1: जी
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं
1: बिल्कुल, वो
0: कि
1: दर्शन
0: एक
1: जो
0: छोटे
1: उन्होंने
0: पिंजरे
1: दिया
0: में
1: है।
0: पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे
1: अध्यात्म के
0: संसार
1: गीत
0: की
1: हुए।
0: हालत क्या हो गई
1: हाँ
0: भगवान,
1: हाँ
0: कितना बदल गया इंसान।
1: बिल्कुल
0: हाँ, और मतलब ये मैं कहूं कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी।
1: देखी
0: हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
1: मुखड़ा
0: क्या
1: देख ले
0: बताऊं,
1: दर्पण में।
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं, और आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज
0: है।
1: है उनके पास, और आज
0: हाँ,
1: भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
0: सुनते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना, समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो

0: इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है। तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में। यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको कि देखो देखो आईका आईका सर्व लोग आईका, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा जी
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं
0: हाँ
1: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब सब लोग, तुम क्यों रो रही हो?
0: हाँ
1: मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे
0: चुप
1: वो कराती थी कि
0: कराती
1: नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और
0: थी
1: तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूं, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं। अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में कुछ लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले

0: दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपने ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
1: कहां से लाई हो।

को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा, तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की, जहां उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है, ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर खोए।

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक

0: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। सीबीएसई इति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोल साम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात रक्षण प्राप्तुम आमपन्नम तक्रम सत्तुपेयम बेलपन्नम पानकम नीरमोर सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनम हितकरम अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभवः निहितः अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीड़ा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्याम प्रतियोगितायाम प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकरः, देवमी

0: श्रोते हो नमस्कार. मन की बात वर आधारित वृत्त विशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, मन की बात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या श्रोत्यांबरोबर संवाद साधला. देशभरात विविध क्षेत्रात होत असलेल्या परिवर्तनाविषयीची माहिती त्यांनी सामायिक केली. तसंच प्रत्येकानं चौकटीबाहेरचा वेगळा विचार केला तर शांतीमध्ये क्रांती घडून येऊ शकते याची काही प्रेरणादायी उदाहरणं श्रोत्यांपुढे मांडली. मन की बातशी संबंधित तामिळनाडूमधील नागरकोळीच्या शिक्षिका गिरिजा अम्मा यांच्या संकल्पाची गाथा आज प्रधानमंत्र्यांनी सांगितली. ती आपण त्यांच्याच आवाजात ऐकूया.
1: पिछले महिने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ. इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ. तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई. करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था. मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की. इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे. साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं. इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है. उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है. उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया. इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया. उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए. इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए. गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा. उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है. पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं. देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है. मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया.
0: श्रोते हो, अलीकडेच प्रधानमंत्री मोदी परदेश दौऱ्यावर गेले होते. युरोपातील नेदरलँड्समध्ये भारतातील चोल साम्राज्याचा इतिहास सांगणाऱ्या अनमोल ताम्रपट्टिका भारताला परत देण्यात आल्या. त्यांच्या या अनुभवाविषयी अधिक जाणून घेऊया.
1: बीते दिनों मुझे युरोप के नेदरलँड जाने का अवसर मिला. वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हूं. इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया. नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई. उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे. इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं. लोग खुशी जता रहे, गर्व व्यक्त कर रहे हैं. दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है. साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है. इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ. इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं. ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है. इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है. इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है. इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी. दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है. चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है. साथियों, हमारी सरकार भारत

0: ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: श्रोते हो, भारतीयांना खगोलशास्त्र अर्थात ग्रहतारे, आकाशगंगा यात खूप रस असतो। आकाशदर्शन, तारे निरीक्षणाचा छंद जोपासणारी मंडळीही आपल्याकडे आहेत। ग्रामीण भागामध्येही या छंदाविषयी खूप चर्चा होत आहे। याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या रोचक माहितीबरोबरच त्यांनी केलेलं आग्रहाचं आवाहन जाणून घेऊया।
0: हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरी हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए।
1: श्रोते हो, रणरणत्या कडक उन्हाळ्यामध्ये थंडगार सरबतांनी मिळणारी शीतलता सर्वांना हवी हवीशी वाटते आणि मधुर रसाळ आंब्याचा गोडवा म्हणजे निसर्गानं उन्हाळा सुसह्य करण्यासाठी दिलेलं जणू वरदानच। सरबत आणि आंबे यामध्येही राज्यांमध्ये असलेल्या वैविध्याचा उल्लेख आज प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात मध्ये केला।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रस

0: रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: श्रोते हो, आजच्या काळात पोहण्याची कला सर्वांना अवगत असली पाहिजे असा ध्यास घेऊन कार्यरत असलेल्या केरळमच्या आलुवामधल्या साजी वलाशेरील यांचं प्रधानमंत्र्यांनी विशेष कौतुक करून त्यांच्या अभियानाची माहिती श्रोत्यांना दिली। तसंच कार्यक्रमाच्या प्रारंभीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी क्रीडा क्षेत्रामध्ये लक्षणीय कामगिरी करून आपलेच विक्रम मोडणारे धावपटू गुरविंदर सिंह आणि अनिमेश कुजूर या खेळाडूंबरोबर थेट संवाद साधला, त्यांचं मनोगत आकाशवाणीच्या श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवलं। श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ऍपवरही लाईव्ह ऐकू शकता। यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या युट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल। याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादन आणि सादरकर्त्या संगीता गोडबोले, निर्मिती सहाय्य स्नेहा कांबळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन तुषार पवार।

0: टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यामा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेष

0: विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को

0: मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins

0: is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेता

0: यात्री को जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
2: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना,
3: हाथ
4: नहीं लगाना राधा।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। तेरे को बताऊंगी एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
2: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
1: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
1: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया, मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं

0: आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे, और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण, प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन, कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: का एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

0: फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।
1: गावा

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: बांसुरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ

0: कोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुचरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुर यर्रैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। Sri V.N. Balachandar is a renowned Dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchirai T.G. Muthukumara Swami Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yeraiya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain. Ninnu Kori Yunannura se ye rachna T. Singarachari ki hai, jo raag vasant aur adi taal mein nibaddh hai.
1: Sri Yeraiya begins his saxophone recital with Ninnu Kori Yunannura, a composition of T. Singarachari in Rag Vasanta set to Adi Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है। राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु एर्रय्या इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रय्या नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सुरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियात

0: अद्यतन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myin Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said